यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

गणेशं सरस्वतीं गुरून् नत्वा अभ्यासं कुर्मः। हम गृहजनों का परिचय कैसा करते हैं देख लिया। अद्य वयं पश्यामः कः किं करोति, कौन क्या करते हैं। जैसे बालकः पठति, लड़का पढ़ता है। युवकः लिखति, युवक लिखता है। गायकः गायति, गायक गाता है। पठति लिखति गायति, वैसे ही बालिका पठति, लड़की पढ़ती है। युवती लिखति, तरुणी लिखती है। गायिका गायति, गायिका गाती है। तो गायकः किं करोति, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर आना चाहिए गायकः गायति। प्रश्न भवति किं करोति, क्या करता है या क्या करती है। तो पहले उत्तर बताएंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर से उत्तर सुनेंगे। पुल्लिंगे प्रश्नोत्तरं भवति बालकः किं करोति, बालकः पठति। तो हमने क्या किया, ऐसा कहा, प्रश्न था लड़का क्या करता है, उत्तर आया लड़का पढ़ता है। अब अभ्यास करते हैं। गायकः किं करोति, गायकः गायति। युवकः किं करोति, युवकः लिखति। शिक्षकः किं करोति, शिक्षकः पाठयति। स्त्रीलिंगे प्रश्नोत्तरं कैसे करेंगे देखते हैं। बालिका किं करोति, लड़की क्या करती है, बालिका पठति, लड़की पढ़ती है। तो बालिका पठति, बालिका किं करोति, बालिका पठति। गायिका किं करोति, गायिका गायति। युवती किं करोति, युवती लिखति। तो देखिए बालकः पठति, बालिका पठति। महिला गायति, पुरुषः गायति। गायकः गायति, गायिका गायति। तो लिंग भेद नहीं है, मगर अहम् जब आएगा तो वाक्य होगा अहम् पठामि, अहम् लिखामि, अहम् गायामि। तो कैसे देखिए, बालिका पठति, अहम् पठामि। बालकः लिखति, अहम् लिखामि।

शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। शिक्षकः किं पाठयति? शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। फिर से अहम् किं करोमि? देखते हैं। अहम् किं करोमि? मैं क्या करती हूँ? अहम् पठामि, तो मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। अहम् नमामि, अहम् गुरुम् नमामि, अहम् मातरम् नमामि। किन किन को नमस्कार करते हैं? हाँ, मातरम, गुरुम, तो देखिए छोटा सा गाना है बालगीतम।

0: मामी मातरम। उत्तम, समझ में आया? तो आज जब आप कुछ कुछ करेंगे ना, तो सोचेंगे मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, वह क्या करता है, मेरा बेटा क्या करता है, तो संस्कृत का अभ्यास बहुत ठीक से हो जाएगा। धन्यवाद। अभ्यास अभवत। अद्य प्रश्न अस्ति, आप क्या करते हैं? भवान किम करोति? महिला अस्ति चेत भवती किम करोति? उत्तरम अवश्यम प्रेषयतु। यदि इच्छति भवत्याः नाम अपि लिखतु। अस्तु, इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्। प्रतिसप्ताहं पञ्च श्लोकान् पठामः। अद्य श्लोकसंख्या अस्ति एकतः पञ्च पर्यन्तम्।
1: श्री गणेशाय नमः।
2: श्री गणेशाय नमः।
1: अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य
2: अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य
1: बुधकौशिकऋषिः
2: बुधकौशिकऋषिः
1: श्री सीतारामचन्द्रो देवता
2: श्री सीतारामचन्द्रो देवता
1: अनुष्टुप् छन्दः
2: अनुष्टुप् छन्दः।

0: मुखं सौमित्रिवत्सलः
1: अद्य वयं रामरक्षास्तोत्रस्य श्लोकसंख्या 1 5 पर्यन्तं पठितवन्तः। आज हमने रामरक्षा के 5 श्लोक पढ़े। यह पूरा सप्ताह हम यही 5 श्लोक बोलेंगे और अगले सप्ताह में अगले वाले यानी श्लोक संख्या 6 से 10 तक के श्लोक बोलेंगे। धन्यवाद। अद्यापि

0: भक्ति में सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली गुणधुनी 90.4 एफएम वरती तुम्ही ट्यूनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: शक्ति का महत्व. आज की दुनिया में नाम और काम उसी का होता है जो होता है शक्तिवान. जिसके पास धन बल, बाहुबल या हो अर्थ बल, उसी का ही दुनिया में बोलबाला होता है. वास्तव में ये सब है शक्ति के रूप. व्यक्ति की कीमत शक्ति से होती है. शरीर में ताकत यानी शक्ति ना हो तो पानी का गिलास उठाना भी बड़ा मुश्किल लगता है. तन दुर्बल हो तो एक कदम आगे बढ़ाना भी कठिन हो जाता है. अतः शक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है. वास्तव में शक्ति के भिन्न भिन्न रूप है, जैसे ताकत, बल या ऊर्जा आदि नामों से उसको जाना जाता है. जैसे वाहन चलाना हो तो पेट्रोल डीजल चाहिए, चूल्हा जलाना हो तो लकड़ियां, और स्टोव जलाना हो तो चाहिए मिट्टी का तेल. यह पेट्रोल डीजल लकड़ियां केरोसिन आदि ईंधन है. ऐसे ही इंसान के चेतन हलचल या क्रियाओं के लिए शक्ति भी एक ईंधन के समान होती है. मानव जीवन की जीवंतता के लिए शक्ति परम आवश्यक है. बिना शक्ति से तो मानव है मुर्दा. वैसे शक्ति को दृश्य आंखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन शक्ति का एहसास होता है. शक्ति के यूं तो दो प्रकार है, एक है भौतिक शक्ति और दूसरी है आध्यात्मिक शक्ति. जहां पेट्रोल डीजल आदि ईंधन में छिपी ऊर्जा भौतिक शक्ति है, तो उसी के भेंट में आत्मा एक चैतन्य शक्ति है. जहाँ कोई भी स्थूल साधन या यंत्र व मशीनरी को चलाना हो तो शक्ति चाहिए. ऐसे ही मानव मूल्यों अर्थात सद्गुण निरंतर जीवन में अपनाए जाए तो वह भी व्यक्ति की शक्ति बन जाते हैं. कार्य चाहे निर्माण या विनाश का हो, सभी के लिए चाहिए शक्ति, क्योंकि इन सभी का आधार शक्ति है. सारे ब्रह्मांड का संचालन व गतिशीलता भी शक्ति के कारण ही है. लेकिन इन सब में सर्वोच्च शक्ति है ईश्वरीय शक्ति. परमात्म शक्ति ही मानव उत्थान और सृष्टि परिवर्तन का कार्य सहज कराती है. केवल ईश्वरीय शक्ति ही दुख भरी दुनिया को सुखमय संसार में बदल सकती है. अतः आत्मिक शक्तियों को जगाइए और विकृतियों पर विजय पाइए. ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसु पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: अरे घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
3: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
4: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
7: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
8: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
9: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
8: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
10: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
8: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
11: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।
12: KLE फार्मसी कॉलेज बेळगावी 2026-27 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ। ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ। ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ, ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು PhD ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ। ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ। ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್। ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ। ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು। ನ್ಯಾಕ್ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು NIRF ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, बी रिलैक्स में आज हम पार्टी करने वाले हैं, ढेर सारे गाने सुनेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

पार्टी से मेरा मतलब था कि पार्टी की प्लानिंग करने वाले हैं। आपको क्या लगा मैं आपको अपने स्टूडियो बुलाऊंगी ताकि हम साथ में पार्टी कर सकें? एक्चुअली साथ में पार्टी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मनाती हूँ पार्टी, आप अपने घर पे मनाइए, पर उसकी प्लानिंग तो कर ले पहले। प्लानिंग, पार्टी की प्लानिंग का पार्टी में बहुत बड़ा रोल होता है। आपके हिसाब से कोई पार्टी या फंक्शन क्या होता है? बर्थडे हो तो उस दिन शाम को दोस्तों को बुलाकर जो सेलिब्रेशन आप करते हो उसे पार्टी कहते हैं? नहीं, पार्टी की शुरुआत होती है उस विचार से जो आपके दिमाग में कभी आता है कि चलो ये स्पेशल डे आ रहा है और उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ से लेकर जब आप सारी तैयारी करके गेस्ट को बुला के वो दिन सेलिब्रेट करते हो और उसके बाद में वो गेस्ट घर अपने वापस चले जाते हैं, वो पूरी पार्टी ख़त्म होने के बाद गेस्ट अपने घर पर और आप अपने घर पर उस दिन को, उस सेलिब्रेशन को याद करते हैं, वहाँ तक ये जो पूरा प्रोसेस है उसे पार्टी कहते हैं, पूरा एक्सपीरियंस है उसे पार्टी कहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन अलग होती है। बातें तो बहुत सारी करेंगे, उसी के साथ गाने भी बहुत सारे सुनने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं आज के शो में और सुनाती हूँ अगले कुछ प्यारे गाने। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

दोस्तों पार्टी जो है वो खाने पीने की चीज़ें, चमक दमक, लाइटिंग, म्यूज़िक और इन सब से कपड़े, तैयारियां, इन सब से नहीं होती। पार्टी इज़ ए एक्सपीरियंस। पार्टी जहां पर आपको जाके बहुत लाइट फील होता है, बहुत हल्का हैप्पी फील होता है, जहां पर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की स्ट्रेस, अपनी लाइफ की भागदौड़ सब भूल जाते हैं, इस एक्सपीरियंस को पार्टी कहते हैं। तो पार्टी का एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो होस्ट है उसके लिए भी और जो गेस्ट है उसके लिए भी, यानी जिसने पार्टी रखी है उसके लिए भी और जिसने जो पार्टी में आया है, जो पार्टी में गेस्ट मेहमान बन के आया है उसके लिए भी। कैसे ये एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको बताऊंगी कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

अब गेस्ट के लिए पार्टी का एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है? आपने अपने घर में किसी दिन कोई चर्चा होते हुए सुनी होगी कि उसके यहाँ शादी में गए थे और वहाँ पे चाट बहुत बढ़िया थी, अरे मिठाई खानी हो तो यहाँ से मंगवानी थी ना, क्यों किसी और जगह से मंगवाई, या फिर उनके शादी में कितनी आतिशबाजी की थी, कितनी रोशनाई थी, बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी उनके घर में। ये फंक्शन में जाकर हमें बहुत सुकून लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी चर्चाएं हमारे घर में रोज़ाना होती है, जब भी हम किसी के यहाँ कोई फंक्शन अटेंड करके आते हैं, कोई मेहमान नवाजी का आनंद लेकर आते हैं। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि गेस्ट के लिए पार्टी का एक्सपीरियंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस भले ही आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी तैयारियाँ की हो, पर उस गेस्ट को उस दिन अच्छा एक्सपीरियंस ना मिला हो तो आपकी सारी तैयारियाँ पानी में जाती हैं। और भले ही आपने सिंपल सी तैयारियाँ की हो पर गेस्ट ने आपके यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, तो लाइफ लॉन्ग वो आपकी पार्टी को याद रखेगा और आपकी पार्टी सक्सेसफुल कहलाएगी। वैसे ही होस्ट के लिए भी पार्टी बहुत मायने रखती है, पार्टी के एक्सपीरियंस मायने रखते हैं। कैसे, आपको बताऊंगी कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

जब हमारे घर में किसी फंक्शन पार्टी के लिए कुछ लोग कुछ मेहमान आते हैं, तो सोचो अगर बच्चों की पार्टी है और आप बर्थडे पार्टी है और आपने सारी तैयारियां की है और बहुत सारे बच्चों को बुलाया है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स रखी है, उनके लिए तरह तरह के खाने ऑर्गेनाइज किए हैं, म्यूज़िक है, रिटर्न गिफ्ट्स है, यानी बहुत लंबा तामझाम है, और ये करते करते आप थक जाते हो। पार्टी के दौरान भी बच्चों को संभालते संभालते आप थक जाते हो। उसमें से अगर कोई बच्चे शैतान हो और उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा हो, तो ये पार्टी जो है भले ही गेस्ट ने बहुत एंजॉय की होगी, पर आपके लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाती है। और फिर आप क्या याद करते हो? आप हमेशा याद करते हो कि तुम्हारे 10वें बर्थडे पे तो हमने ये किया था और तुम्हारे दोस्त इतने आए थे, उसमें से वो कैसा शैतान था, घर की हालत कैसी हो गई थी, कैसे सब खिलौने तोड़ के रख दिए थे, बलून्स फोड़े थे, दिस एंड दैट। तो होस्ट के लिए भी अपने गेस्ट को होस्ट करने का एक्सपीरियंस अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अगर उस पार्टी में होस्ट खुद भी बहुत परेशान हो गया हो, तो अगली बार वो ऐसी पार्टी थ्रो करेगा ही नहीं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन पार्टी की तैयारी में इस एक्सपीरियंस का क्या लेना देना, बताऊंगी कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए KLE Vindhyavani 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

भाई पार्टी की प्लानिंग और तैयारियों की वजह से दोनों के ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, होस्ट के भी गेस्ट के भी। होस्ट बहुत एग्जॉस्ट हो जाए, परेशान हो जाए, थक जाए, पर गेस्ट पार्टी बहुत एंजॉय करता है। अगर ऐसा हो तो होस्ट अगली बार पार्टी होस्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा। और अगर होस्ट ने ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डाले हैं, वो रिलैक्स है, उसने कुछ मेहनत नहीं की है और गेस्ट को बहुत सारा इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो गेस्ट उस घर में पार्टी या किसी फंक्शन पे जाने से पहले 100 बार सोचेगा। इसीलिए दोनों ही तरफ एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए तैयारियां भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब तैयारी से हम ये सोचते हैं कि पार्टी कहाँ पर रखेंगे, कौन से दिन पर रखेंगे, क्या टाइम कन्वीनियंट होगा, उसकी थीम क्या होगी, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, मेन्यू क्या होगा, लेने छोड़ने कौन जाएगा या खुद आ जाएंगे, गिफ्ट्स क्या देने हैं, ये सब की तैयारी। सिर्फ इसको पार्टी की प्लानिंग या तैयारी नहीं कहते। प्लानिंग पार्टी से पहले शुरू होती है और पार्टी के बाद तक चलती है। कैसे बताऊंगी कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए के एल ई वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

हमें पार्टी प्लान करनी है, मतलब सिर्फ पार्टी प्लान नहीं करनी है, उसके अलावा उससे पहले हम क्या करने वाले हैं ताकि हमारी पार्टी अच्छी हो, और उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं ताकि हमारी थकान जल्दी उतर जाए और उस पार्टी से ज़्यादा हमें तकलीफ ना हो, हमारी नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ तुरंत ही पटरी पर आ जाए। इसे कहते हैं एक्चुअल और प्रॉपर पार्टी प्लानिंग। तो आप जब पार्टी का मेन्यू डिसाइड करते हैं तो उसके साथ साथ आप पार्टी खत्म होने के बाद उसके अगले दो दिन का मेन्यू भी डिसाइड करेंगे। जब आप पार्टी का मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पार्टी के बाद के दो दिन के मेन्यू भी अगर डिसाइड कर दे तो प्रिपरेशन करनी आसान हो जाएगी। जैसे पार्टी में जो जो बनने वाला है उसकी तैयारियां आप कर रहे हैं और आपके दिमाग में क्लियर है कि पार्टी के बाद दो दिन तक हम ये खाना बनाने वाले हैं, तो साथ साथ में आप वो भी तैयारियां कर लेंगे ताकि पार्टी ख़त्म होने के बाद जब आप थक जाओ और दूसरे दिन आपका खाना बनाने का मन ना हो तो आपको जो खाना बनाना है वो आसानी से आप बना सकते हो। यानी सब कुछ रेडी होगा, बस आपको तड़का मारना है और आपको घर का खाना खाने को मिल जाएगा, क्योंकि पार्टी के दौरान आपने बहुत हैवी खाना खाया होगा, आप बहुत थके होंगे, तो आपको ऐसा खाना चाहिए। आप बाहर से भी नहीं मंगवाना चाहते, आपको घर का भी खाना है और आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने हैं। तो व्हाइल प्लानिंग फॉर द मेन्यू ऑफ योर पार्टी, यू शुड प्लान फॉर द नेक्स्ट टू डेज ऑल्सो। फिर आपको जो पार्टी से पहले हम साफ सफाई करते हैं, घर चमकाते हैं, उसके साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो प्लान फॉर द क्लीनिंग आफ्टर द पार्टी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे हैक्स आपको इस्तेमाल करने हैं ताकि पार्टी के दौरान घर ज़्यादा गंदा ना हो और पार्टी के बाद साफ सफाई करना आपके लिए आसान हो। एक सिंपल सी टिप आपको दूंगी, जब पार्टी ख़त्म हो जाए, सब अपने अपने घर चले जाए, तब आई नो आप बहुत थके हुए होंगे और आपको मन करता हो कि सब जाए तेल लेने, मेरे को सोना है। थोड़ी सी, इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए और उसी दिन जो बड़ी बड़ी साफ़ सफाई है, यानी कूड़ा कचरा जो फैला हुआ है उसे साफ़ करके भर लीजिए, जो बर्तन गंदे हैं उन्हें साफ़ करके वॉश करके रख दीजिए, अब जो आपने फर्नीचर हिलाया था और जो एक्स्ट्रा चेयर्स जो आप लेकर आए थे अपने गेस्ट को होस्ट करने के लिए, उनको उनकी जगह पर रख दीजिए, फर्नीचर को बैक टू उनके ओरिजिनल जगह पर ला के रख दीजिए। यानी जो बड़ा बड़ा काम, बड़े बड़े ऊपर ऊपर मोटा मोटा जो है ना, वो पूरा उसी दिन ख़त्म कर लीजिए। वैसे भी आप थके हुए हो, थोड़ी और थकान सही, पर बड़ा बड़ा काम जब हो जाएगा तो दूसरे दिन जब आप उठते हो तब आपको ऐसा नहीं होगा कि इतना सारा काम पड़ा है और मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। आपका घर बैक टू नॉर्मल आपको दिखेगा और आपका रूटीन भी बैक टू नॉर्मल बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी टिप है। इसी के साथ कुछ प्यारे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सुनते रहिए KLEV Venudhwani 90.4 FM, बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

कुछ ऐसी आदतें साफ सफाई वाली और तैयारियों वाली हमारे लाइफ में हमेशा होनी चाहिए, ताकि हमारा घर जो है वो हमेशा पार्टी रेडी रहे। कोई अचानक से आ जाए, अचानक से प्लान बन जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए घर पे ये नहीं है, घर साफ नहीं है, ये चीज़ें मंगवानी पड़ेगी, घर साफ करना पड़ेगा, ऐसी हड़बड़ी ना मचे। हमेशा ही अपना घर रोज़ाना ही क्लीन रखो, ताकि अचानक से कोई आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। घर पे हम जो मंथली राशन लाते हैं वो सिर्फ हम अपने घर के हिसाब से लाते हैं, तो उसके साथ में ना थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसी व्यवस्था करके रखनी चाहिए, ताकि

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स पे अब आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है, पर उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात पार्टी प्लानिंग के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या होता है कि जब हम कोई बड़ा फंक्शन या पार्टी ऑर्गेनाइज करने का सोचते हैं तो हमारा पूरा फोकस उस एक इवेंट पर लग जाता है और उस एक इवेंट की तैयारियों में हम लग जाते हैं। वी वॉन्ट टू गिव आवर बेस्ट, और उसके बाद जब ये इवेंट या ये पार्टी ख़त्म हो जाती है तो हम एकदम से हमें खाली खाली लगने लगता है। हम लोग तो ये करना था तो इसके पीछे पड़ गए थे, सारा ध्यान इस पे लगा था, अब ये ख़त्म हो गया तो अब हम क्या करें। ये जो एम्प्टीनेस है, ये जो क्लूलेसनेस है, इससे भी काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। तो और इसकी वजह से भी आपको थोड़ी सी भी थकान लगी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी थकान, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे पास आगे करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैं आराम ही कर लूँ। तो थोड़ी सी थकान भी बहुत बड़ी लगेगी, क्योंकि आपके पास कोई मोटिव नहीं है, आगे कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ फोकस नहीं है। तो हमेशा ही अपनी पार्टी या इवेंट की प्लानिंग तो आप पूरे फोकस के साथ कीजिए ही, पर उसी के साथ वो ख़त्म होने के बाद आप क्या करने वाले हो, उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी भी प्लानिंग थोड़ी बहुत कर लो। तो आपको एकदम जो एम्प्टीनेस फील होता है वो नहीं फील होगा, एंड यू विल इमीडिएटली फॉल इन टू योर रूटीन। और अब जितना जल्दी आप रूटीन में आ जाओगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। इसी के साथ मैं आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और कभी कभार अपने दोस्तों को अपने घर पे होस्ट कर लिया कीजिए। मुझे पता है आप बहुत बिजी है, पर अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने करीबियों के लिए थोड़ा सा समय तो आप ज़रूर निकाल सकते हैं। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।
1: You don't know.

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। यादों की बारात के एक फ्रेश एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज की थीम थोड़ी सी अलग है। आज के गाने, आज का प्रोग्राम सुनने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। पुरानी हवेली, रामुका का दरवाजे की चरमराती आवाज, डायन का हंसना, पायल की छन छन, रात में खिले हुए चांदनी के साये में किसी के गाने की आवाज, सफेद साड़ी, खुले बाल, हाथ में मोमबत्ती। किसी हिंदी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं सुना रही हूँ मैं आपको, आज का हमारा थीम बता रही हूँ और आज हॉरर फिल्म के गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ। शुरू करते हैं आज का शो। और जब भी हॉरर फिल्म के गानों की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। पता नहीं हम ऐसे भूतों को, डायनों को इतना बदनाम क्यों करते हैं। चलो पता करके देखते हैं। सुनते हैं ये गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। गुमनाम फिल्म का ये गाना है जिसमें मनोज कुमार, नंदा, प्राण, महमूद, हेलन, मदन पुरी और तरुण बोस ने काम किया था। आप सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

वेलकम बैक दोस्तों, यादों की बारात में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप कहीं डर तो नहीं गए ना? डरना नहीं, मैं बस आपको हॉरर फिल्म के गाने सुना रही हूँ, कोई हॉरर स्टोरी नहीं। अगला गाना है आएगा आएगा आएगा आने वाला आएगा। महल इस फिल्म का ये गाना है जो 1949

90.4 FM वेणु ध्वनि KLE कनसु पे अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। वो कौन थी? इस फिल्म का ये गाना है जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और म्यूजिक दिया है मदन मोहन ने। ये एक हॉरर क्लासिक फिल्म थी। फिल्म डरावनी थी पर गाने बेहद खूबसूरत थे। क्या आपको पता है मदन मोहन ने इस ट्यून को 1952 में कंपोज किया था, पर वो इस ट्यून को किसी गाने के लिए यूज ही नहीं कर पाए। पर जब राज खोसला को वो कौन थी इस फिल्म के लिए एक हॉन्टिंग मेलोडी की ज़रूरत थी, तब मदन मोहन को उनकी ये पुरानी ट्यून याद आई और उन्होंने इस ट्यून पे जो गाना बनाया वो अजर अमर हो गया, उस डर की तरह जो हमको कभी छोड़ता नहीं है। आप सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

वेलकम बैक दोस्तों, यादों की बारात पे मैं आरजे स्वरा आपका स्वागत करती हूँ। अपना दिल थाम के बैठिए, अगर आपके आसपास कोई है तो उनका हाथ थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम कुछ हॉरर फिल्म्स के गाने आपको सुना रहे हैं। कभी किसी का दिल न जलाना, क्या पता वो दिल हमेशा के लिए ही जलता रह जाए और फिर आपके रातों की नींद हराम हो जाए। अगला गाना है कहीं दीप चले कहीं दिल। 20 साल बाद इस फिल्म का ये गाना है जो 1963 में रिलीज हुई थी। इसमें काम किया था बिस्वजीत और वहीदा रहमान ने, इसे गाया है लता मंगेशकर ने। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और बने रहिए हमारे साथ। डर के भाग नहीं जाना।

यादों की बारात में कुछ डरावने गानों के साथ मैं आरजे स्वरा फिर से हाजिर हूँ। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू। अगर आपका साथी कहे कि डरो मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा या रहूंगी एक साए की तरह, तो कितना अच्छा लगता है। पर अगर सोचो आपका साथी एक साए की तरह आपके साथ है, इसका आपको एहसास हो। ऐसे ही नहीं, कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा। पर हमारे इस गाने के हीरो को तो डर नहीं लग रहा है। अगला गाना है तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया इस फिल्म का ये गाना है, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और म्यूजिक दिया है मदन मोहन ने। पहले इस फिल्म का नाम था साया, पर जब ये गाना कंपोज हुआ और रिकॉर्ड हुआ, इतना खूबसूरत लगा कि इस फिल्म का ही नाम मेरा साया रख दिया गया। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और ध्यान रखिए, कहीं कोई साया तो नहीं है आपके आसपास। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू।

वेलकम बैक दोस्तों, यादों की बारात में मैं आरजे स्वरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ हॉरर फिल्म्स के हॉरर गाने सुन रहे हैं जो सुनने में काफी मेलोडियस है, तो आई गेस आपको डर कम लग रहा होगा। अगला गाना है भूत बंगला। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है भूत बंगला। इसमें काम किया है महमूद आर डी बर्मन और सुरेश ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने, म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने। महमूद की एक्टिंग इस फिल्म में बहुत खूबसूरत है। हो भी क्यों ना, महमूद तो एक वर्सटाइल एक्टर थे, पर ये आर डी बर्मन की ऑन स्क्रीन डेब्यू फिल्म है, यानी पहली बार ऑन स्क्रीन आर डी बर्मन ने इस फिल्म में काम किया था, एक हॉरर फिल्म में। आर डी बर्मन की डेब्यू फिल्म एज अ म्यूजिक कंपोजर भी महमूद के साथ ही थी, यानी पहले तो उन्होंने गुरुदत्त और वहीदा रहमान की फिल्म राज को म्यूजिक दिया था, पर किसी कारण वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई और वो म्यूजिक हमने कभी सुना ही नहीं। पर आगे चल के उन्होंने महमूद की ही फिल्म छोटे नवाब को पहली बार म्यूजिक दिया और इंडस्ट्री में इंडिविजुअल म्यूजिक कंपोजर के तौर पे अपना कदम रखा। सुनिए ये गाना और कोशिश कीजिए कि आप ना डरे। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसो।

0: हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आरजे स्वरा के साथ आप यादों की बारात के सफर के अंत तक आ पहुंचे हैं। अब समय हो चुका है आपको इस शो का आखिरी गाना सुनाने का। गाना है आजा रे परदेसी। मधुमती इस फिल्म का ये गाना है जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है शैलेंद्र ने और म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने। ये एक पुनर्जन्म की कहानी है। ये फिल्म मुंबई की रॉक्सी थिएटर में तब्बल 24 वीक्स तक ऑन स्क्रीन रही और इस फिल्म में वैजयंती माला ने जो कॉस्ट्यूम्स पहने थे उन्हें उनकी दादी यादुगिरी देवी जी ने डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि इस फिल्म का बजट थोड़ा सा टाइट था। एक्चुअली हुआ यूँ था, जो इस फिल्म के मेकर थे बिमल रॉय, वो अपने बजट से थोड़े से बाहर चले गए, उसकी वजह से उनका हाथ काफ़ी।
1: ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 ಎಫ್ಎಂ. ಇದು ಕೆಎಲ್ಇ ಕನಸು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾರ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।